0: Radio 2000 98.5 FM Community Program
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM
0: Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार विचार संगीत और सामाजिक सूचनाएं
0: रेडियो 2098.5 एफएम मल्टीकल्चरल रेडियो
2: जीली मकार्थर की साल के अंत की डेमो क्लियरेंस सेल अब शुरू हो गई है इस जून जीली मकार्थर से कोई भी डेमो जीली खरीदिए और पाइए तीन साल की मुफ्त सर्विसिंग $2000 का शानदार ट्रेड इन बोनस साथ ही प्रीमियम पेंट बिल्कुल मुफ्त जीली की शानदार एसयूवी रेंज पर बेहतरीन बचत का यह मौका हाथ से ना जाने दें चाहे वह पूरी तरह इलेक्ट्रिक जीली EX5 हो या दमदार सुपर हाइब्रिड स्टार रे EMI ऑफर 30 जून तक ही मान्य है आज ही जीली मकार्थर आए और अपनी पसंदीदा जीली घर ले जाए नियम एवं शर्तें लागू MD5411
3: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks. And we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: 2000 station sponsor.
5: Aaj Ravivar Yugabd 5126, Kalyug Vikram Samvat 2083, Ashad Mahine ke Krishna Paksh ki Panchami 5 July 2026 hai. दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। मध्यम वर्ग भारत की वृद्धि का इंजन वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 500 शहर बनेंगे एक नए आर्थिक केंद्र केतन हत्याकांड कोडवर्ड्स निकनेम और इमोजी के जरिए रची गई साजिश सिया की सीक्रेट चैट्स डिकोड करेगी पुलिस शांति समृद्धि और स्थिरता भारत जापान शिखर सम्मेलन हुआ सफल हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी मजबूत राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन के रिकॉर्ड्स गोपनीय रखना सही है केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय के फैसले को सही ठहराया वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार होने वाला है खत्म मैनचेस्टर में मिलेगा मौका क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा अब सुनिए समाचार विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मध्यम वर्ग को भारत की वृद्धि का इंजन बताया फ्रांस के प्रमुख आर्थिक मंच रेन कॉर्टिस इकोनॉमिक्स DXN प्रोविंस में एक पैनल चर्चा के दौरान सीतारमण ने कहा कि लगभग 500 शहर देश के

0: महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले से धक्का देकर हत्या के मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी सिया गोयल की मोबाइल चैट्स को डिकोड करने में जुटी है। इन चैट्स में कोडवर्ड्स, निकनेम और इमोजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनका मतलब केवल सिया ही बता सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत जापान साझेदारी हिंद प्रशांत और उससे आगे शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार है। मंत्रालय ने यहां आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को बेहद सफल बताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने के लिए सरकार से स्वीकृत योजना और उससे जुड़े आदेश को एक गोपनीय फाइल में रखा था। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2024 के एक आदेश में आरटीआई एक्ट के तहत इन रिकॉर्ड्स को नहीं देने के फैसले को सही ठहराया था। पूरा क्रिकेट जगत एक टकटकी लगाए वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रहा है। आयरलैंड के खिलाफ उनको मौका नहीं मिला था और न ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में, लेकिन आज मैनचेस्टर में खेले जाने वाले T20 में वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार खत्म हो सकता है। इस बात का संकेत वैभव सूर्यवंशी ने खुद दिया है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की मांग लगातार उठ रही है। संजू सैमसन के फेल होने के बाद तो इसने और तूल पकड़ा है। हालांकि विश्व क्रिकेट में इस बात को लेकर दो भागों में बांटा हुआ है। एक धड़े का मानना है कि वैभव को डेब्यू का मौका मिलना चाहिए, तो वहीं एक बड़ा धड़ा मानता है कि अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,34,650 रुपये प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95.23 रुपये और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66.09 रुपये। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
1: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का हाईलाइट है फेस टू फेस इंटरव्यू विद बॉलीवुड एक्टर मिस्टर प्रकाश बेलवाड़ी। गपशप विथ आई स्पेशल कॉन्वर्सेशन विथ प्रोफेसर कोपल सिन्हा। मुमताज के सदाबहार गीत भी आप सुनेंगे। इससे पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करें, ऋचा जी से आज का विचार।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज का विचार है कि अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और सांस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर।
2: श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने बताया कि दर्पण स्टूडियो के लिए आज बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है कि आज जो है वो हमारे स्टूडियो में बॉलीवुड एक्टर पधार रहे हैं और बहुत ही भाग्य की बात है कि वो यहाँ पे हैं उपस्थित। और मेरे ख्याल से दर्पण स्टूडियो के लिए ऐतिहासिक बात है कि श्री प्रकाश बेवाड़ी जी आज साक्षात पधारे हैं हमारे स्टूडियो में। तो उनको सेटल होने देते हैं, फिर आपसे उनका परिचय कराते हैं। तो आइए, आज मुमताज के गीतों की, सदाबहार गीतों की लड़ी लगेगी, तो सुनते हैं मुमताज का ही एक गीत।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
2: नमस्कार सिडनी, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज पहली बार दर्पण हिंदी रेडियो के स्टूडियो में कदम रखा है बॉलीवुड और भारतीय रंगमंच की एक ऐसी शख्सियत जिनका हर किरदार अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। जब अभिनय की बात हो, जब रंगमंच की बात हो, तब सिनेमा की बात हो, तो एक ही नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, वो है प्रकाश बेलावाड़ी। जी हाँ, प्रकाश जी एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अभिनेता, निर्देशक, लेखक, पत्रकार, रंगकर्मी और शिक्षक के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। मद्रास कैफे, एयरलिफ्ट, वजीर, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, पठान और अनेक चर्चित फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीता है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म स्टंबल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और रंगमंच की दुनिया में उनका योगदान प्रेरणादायक माना जाता है। आज हम जानेंगे उनके जीवन का वह सफ़र जो कैमरे की रोशनी से कहीं आगे है, उनका बचपन, संघर्ष, थिएटर, सिनेमा, विचार, अनुभव और ज़िंदगी को देखने का उनका अनोखा नज़रिया। तो दर्शकों, श्रोताओं, तैयार हो जाइए एक यादगार मुलाकात के लिए और आइए स्वागत करते हैं मिलके अभिनेता, निर्देशक, लेखक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्री प्रकाश बेलावाड़ी जी का। नमस्कार प्रकाश जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते रिचा जी, गुड मॉर्निंग लिसनर्स ऑफ दर्पण इन सिडनी। मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं दक्षिण भारत से हूँ, मैं थोड़ा तो रुक के हिंदी में बोल सकता हूँ, इसलिए नो यू शुड फॉरगिव मी इफ आई स्पीक इन इंग्लिश।
2: नहीं, बिल्कुल पूरी इजाज़त है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों, हमारे श्रोतागण दोनों भाषा जो है समझते हैं। तो स्वागत करते हुए हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप भारत में कहाँ से हैं, जैसे आपने बताया साउथ से हैं, तो साउथ में कहाँ से, और कुछ अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
3: आई वॉज बॉर्न इन बेंगलोर इन विक्टोरिया हॉस्पिटल इन 1961. I came from a lower middle class family, and what united us and my entire early experience of life has been theater. Actually, the house that I grew up in was called Green Room.
2: Because Green Room? ये तो बड़ा interesting नाम है।
3: Honestly, because my father met my mother when he went to do makeup. They were both amateur artists, and my mother was in intermediate school, and she had to do a male role. And my father, who was working in Kirloskar factory that time, he went to do makeup, and he drew a mustache, and she didn't like it. She said, "I want crepe hair, proper." And because, you know, he was young, she was young, and, you know, he teased her and said, you know, for some people it'll start growing, you know. agar lagta hu main, toh, you know, that problem will be there.
2: Yeah.
3: She said, you know, it doesn't matter, you know, because, you know, I never want to marry. So he kind of fell in love with her.
2: Love with that dialogue.
3: after about 4 or 5 years, you know, she had graduated and, you know, he finally married her. So the house was near, is even now that house is there in Bangalore. It's called Green Room. My brother's family lives there.
2: अरे वाह.
3: Yeah, so.
2: तो बहुत अच्छी बात है. तो ये बताइए कि आपने कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी के माध्यमों में काम किया है, इन तीनों के अनुभव में क्या अंतर है, कि आप किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़?
3: I don't know. See, cinema is a visual language, and the other spoken language is nominal. But you know, I have acted in Malayalam, Tamil, Telugu. I've done a Marathi film as well. You know, so I've done lots of languages. But you know, my language is my mother tongue, Kannada. That is, of course, my favorite language. But I've really enjoyed acting in films in other languages too, particularly in Hindi, Malayalam, and Telugu. Also, one film in Tamil. I've really enjoyed doing one or two films in Tamil. Yeah.
2: बहुत अच्छी बात है. बताइए, मतलब कितने लैंग्वेजेस आप जानते होंगे और कितने कलाकारों के साथ आपने काम किया होगा. मुझे तो यही देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो है, आप बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करके भी आप इतने हम्बल हो. लोगों का तो एकदम सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई हम तो फ़ोटो खिंचा लिए शाहरुख खान के साथ. तो आपने तो बहुत कुछ काम किया, जैसे मद्रास कैफ़े, एयर लिफ्ट और कई पिक्चरों में आपने, आपके पसंदीदा एक्टर कौन से हैं, इतने लोगों के साथ आपने काम किया?
3: मोहनलाल आई थिंक इज इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्टर.
2: अच्छा.
3: मनोज बाजपेयी इज वेरी गुड एक्टर.
2: अच्छा.
3: देयर आर मेनी, आई कांट नेम, बट यू नो माय फर्स्ट नेम्स आई कैन थिंक ऑफ आर मोहनलाल एंड मम्मूटी एंड वेरी गुड एक्टर.
2: अक्षय कुमार के साथ काम करके कैसा लगा?
3: अक्षय कुमार जी इज अ टेरिफिक पर्सन. ही इज अ वेरी, let me say, he is a very charming person and very generous and very kind to his co-artists, you know. Yeah.
2: क्योंकि आपका तो एयरलिफ्ट जब हमने देखी तो आप ऑलमोस्ट पूरी मूवी में ही उनके साथ हैं, अक्षय कुमार के साथ.
3: हाँ, आई एम द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर.
2: या बिल्कुल.
3: नो बट यू नो व्हाट यू सेड दैट आई एम हम्बल, यू सेड, सी यू नो व्हेन टीचर्स इन स्कूल, इन प्राइमरी स्कूल, इन हाई स्कूल, कॉलेजेस, when doctors work in rural places, in villages, there are so many people in India who do so much, you know, for the country. Then nobody knows their names, they go unmentioned. Just because our faces are seen constantly on television or on screens, we become famous. But that is not really fame. That is not fame. When they are humble, how can we be, you know, arrogant, you know?
2: बिल्कुल. तो लोग कहते हैं अक्षय कुमार बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, एकदम सुबह आ जाते हैं.
3: Very good.
2: आप लोगों को भी जाना पड़ता था इतने सुबह?
3: Very well. You know, he, when we were shooting in the Middle East, West Asia, for airlift, because he couldn't get a gym, I heard he was running up 40 floors, you know, for exercise, because he's a fitness, you know, enthusiast, and nobody can smoke in the set, you know, when he's there.
2: Jee.
3: He's a, I've done 2 films with him. I've done another film, two films. I've done Airlift and Sarfira with him.
2: Achha, Sarfira bhi aap dekhi.
3: Yeah, he's... I really love him, you know. He's a very good guy to be with.
2: तो कैसे आपका झुकाव हुआ बॉलीवुड फिल्म में, क्योंकि आप तो साउथ से हैं, दक्षिण से, और कैसे हिंदी फिल्मों में आपकी एंट्री हुई?
3: पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आई एम ए बैक स्टेज पर्सन.
2: जी.
3: यू नो बिकॉज यू नो आई यूज्ड टू डू लाइटिंग एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर डायरेक्शन.
2: जी.
3: एंड I wrote and directed a television series, and which got abruptly stopped. And I had actually started a company along with some friends, and we had 22 employees.
2: Ji.
3: We didn't know what to do, so I decided to make a film.
2: Achha.
3: And I.
2: What age, if I can ask?
3: I was a journalist for many years.
2: Achha.
3: So I worked in Delhi as, you know, chief of news service for Asian Age. And I had some disagreement with with my editor on some political matter, and I resigned. I think he was also happy that I resigned. And anyway, I came to Bangalore. I was close to 40 years that time. I was 39, and I started a company, and I did this television series. It got some name, where it became a kind of cult film, cult TV series.
2: Kya naam?
3: Garva.
2: Garva.
3: It's
2: Hindi
3: called.
2: Mein thi wo?
3: No. It was in Kannada. But there are a lot of Sanskrit words in Kannada.
2: Ji, Kannada mein hai. Haan.
3: So
2: Ji.
3: We called it Garva. And it got abruptly stopped. And the staff was there. So we decided we'd make a film. So first time editor, first time direction for a film, first time script writing for a film,
2: Ji.
3: First time assistant direction, first time camera for film. Everybody was first
2: Ji.
3: New.
2: Ji.
3: And we made the film. That film won the National Award for Best Film in English. And
2: Kamal ki baat hai.
3: And it became kind of text film in those days. I'm saying 2002, 2003 in the US, in some universities, Ji. That film was shown because it is I'll claim it is the first film ever made on dot-com bust and how the stock market was manipulated.
2: बहुत अच्छी बात. नहीं चलिए, आपकी वार्ता श्रोताओं हम लोग की जारी रहेगी. और आपको बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर कोपल सिन्हा भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे. बहुत सारी बातें करनी हैं. और जब अक्षय कुमार की और एयरलिफ्ट की बात हुई है तो क्यों ना एक गीत उसका सुन लिया जाए. कहीं भी मत जाइएगा, रेडियो से जुड़े रहिए. धन्यवाद.

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
3: श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं प्रोफेसर कोपल सिन्हा जी भी, जो मैक्वेरी विश्वविद्यालय सिडनी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और हेल्थ इकोनॉमिक्स की प्रतिष्ठित शोधकर्ता हैं। अपने वर्षों के शोध और जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर इन्होंने गपशप विद आई की शुरुआत की है, एक ऐसा मंच जहां भारतीय मूल की युवा महिलाओं को मार्गदर्शन, अपनापन और जीवन के महत्वपूर्ण सवालों पर खुलकर बात करने का अवसर मिलता है। प्रोफेसर कोपल सिन्हा जी, दर्पण हिंदी रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद ऋचा जी।
3: आपको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले अपने बारे में संक्षेप में बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं, सिडनी कब आना हुआ, वगैरह वगैरह।
4: धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद सुनील जी, इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। मैं ऑस्ट्रेलिया 2002 में आई थी PhD करने के लिए, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में
3: जी।
4: और वहाँ पे मैंने 3 साल PhD कंप्लीट करा। उसके बाद 10 साल हम लोग मोनाश मेलबर्न में थे, वहाँ पे हेल्थ इकोनॉमिक्स की पोजीशन पे मैंने रिसर्च किया। और उसके बाद 2017 में मैंने मैक्वेरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। यहाँ पे भी मैं हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, रिसर्च करती हूँ। और मेरा मोस्टली जो रिसर्च एरिया है वो ये है, बहुत लोग पूछते हैं हेल्थ और इकोनॉमिक्स का क्या यू नो अलाइनमेंट है, बट कोविड के बाद वो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट आपकी हेल्थ इज़ वेरी वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इनकम, आपको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। और अगर हेल्थ खराब होती है तो इट्स काइंड ऑफ ब्रिंग्स यू इन दैट ट्रैप वेयर पुअर हेल्थ एंड पुअर वेलबींग
3: जी।
4: And that's what my research also says. So,
3: तो ये बताइए कि आपके शोध और जीवन के अनुभवों ने आपको गपशप विद आई शुरू करने की प्रेरणा दी, तो ये ख्याल कहाँ से आया और कब इसकी शुरुआत हुई?
4: आई थिंक ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ से एक जो बिल्डिंग ऑन होती है सिचुएशन की
3: जी।
4: आज हम लोग जो बात कर रहे हैं इश्यूज पे, सुगंधा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द कल्चरल डाइवर्सिटी अक्रॉस बॉलीवुड एंड दी फिल्म वर्ल्ड इन इंडिया, और प्रकाश जी ने बड़े अच्छे से बताया। आई थिंक उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में या माइग्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें
3: जी,
4: तो पहले हम तो फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने आए और हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकग्राउंड है
3: जी,
4: विच विल सी अस through our lives
3: जी।
4: और द इशू दैट बच्चे जो फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे या जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं और फिर और बढ़ रहे हैं
3: जी,
4: where do we belong
3: जी,
4: हम ऑस्ट्रेलियन हैं, हम इंडियन हैं। और एक क्वेश्चन जो आता है, आप अगर कम्युनिकेट करेंगे कि प्रोफेशनली जब आप बात करते हैं, वेयर आर यू एक्चुअली फ्रॉम, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग भी पूछते हैं, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हम हैं तो ऑस्ट्रेलियन, बट देन व्हाई इज़ दैट क्वेश्चन कमिंग टू अस, आई मीन यू नो। सो और ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जिसके अंदर कि हम हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, उनको लेके हम चलें। और हमने स्टार्ट किया है ये विद आई, एवरीबडी नोज आई।
3: तो ये नाम क्यों, गपशप विद आई?
4: बिकॉज हमारी आई जो है ना
3: जी,
4: वो उन्होंने यहाँ पे अर्ली 1970s में द फर्स्ट हिंदू टेम्पल वॉज एस्टेब्लिश बाय हर एंड अदर पीपल, एंड शी इज बीन सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द इंडियन कम्युनिटी हियर।
3: और आप बात कर रही हैं मिसेज लीला गुने जी से?
4: मैं बात कर रही हूँ मिसेज लीला गुने जी से, और उनके साथ हमने ये स्टार्ट किया है। उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग फॉर 40 years, and of building a family here, a community here.
3: दर्पण के लिए भी नाम नया नहीं है, आई जो है वो कई बार दर्पण स्टूडियो में आ चुकी हैं और सभी उनसे परिचित
4: exactly. तो हमने स्टार्ट उसके लिए उनके साथ किया है, और हमने बच्चों जो 18 to 25 years old girls हैं उनके लिए initially start किया है, but we intend to expand it to boys and to other people in the community, जो आई जैसा experience है, जिन लोग ने यहाँ पे काफ़ी time spend किया है, the kind of things जो हम लोग उनको support करना चाहते हैं, are around, well, am I Australian enough? Am I Indian enough? Hamari family expectations alag hoti hain. Hum ek alag family values dena chahte hain. Bacche school se ek alag value lete hain. Agar wo Christian school mein ja rahe hain ya kisi aur usme ja rahe hain, religious activities mein ja rahe hain, to unka ek, it's like a melting pot, very similar to the Bollywood story you were talking about, which is ke Bollywood ki koi identity as such नहीं है, जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे. तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी हमारे बच्चों की आइडेंटिटी नहीं है, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के इट्स अ वेरी नाइस मेल्टिंग पॉट फॉर ऑल दीज डिफरेंट कल्चर्स, एंड वॉट दे ब्रिंग आउट इज गोइंग टू बी नॉबल टू अस एज वेल, राइट, अस एज पेरेंट्स एंड एज मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी.
3: तो जो यंग गर्ल्स हैं, सबसे बड़ी चुनौती उनकी क्या है, आपको क्या लगता है? और मैं भी, सुगंधा भी इस बारे में कुछ पूछ सकती हूँ और बता सकती हूँ, क्योंकि हमारी यंग ब्रॉडकास्टर हैं, तो आप भी कोई सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन कोमल जी, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी चुनौती है?
4: आई थिंक सबसे बड़ी चुनौती है नेविगेटिंग द करियर विद द हम्बल अपब्रिंगिंग दैट हिंदुइज्म एंड हमारे जो इंडियन कम्युनिटी में हमारे जो आता है. Kids try to balance that, the two cultures, the balancing of the two cultures is the biggest challenge, mujhe aisa lagta hai.
3: Aur ye kabhi kabhi confusing bhi ho jata hai,
4: confusing ho jata hai. Jaise hum bachchon se ek alag level of expectation rakhte hain jab hum seniors se baat kar rahe hain, but when you go out in the Australian community it's a very different, aap waise hi le lijiye, hum uncle aunty kehte hain hamare seniors ko, aur it's on a first name basis agar aap jaate hain in the community. So while for us it's okay ki bhai at home you have to you have to kind of nurture the culture, but for the kids it's a big challenge. Okay, where do they draw the line? Do they draw the line? Where do they draw the line?
3: Main Prakash ji se bhi puchna chahungi ki jo Bollywood mein aapko ya film jagat mein aapko ye culture kaise dikhta hai ki young girls jo hain क्या वो किसी समस्याओं का सामना करती हैं, चाहे वो रंगमंच हो चाहे वो हिंदी सिनेमा हो.
5: I think in a place like Bollywood or in cities in general in India, young people are more confident, and certainly more confident than before. And once they have economic independence, you know, they, I don't think you can apply the same old rules of tradition to on them. And I have two daughters, you know, and I see how they are. They're very, they can become rebellious very quickly. And I think as a culture, we should be able to understand and absorb that, absorb this and negotiate and find some kind of peace with it. And in a micro way, the problems of losing identity happens even in Indian urban culture. I'll give you an example. I've heard this many times. When you hear a story about, say, Shivji, you know, what he does to Ganesh. And, you know, I believe that Indian children abroad, they get shocked by that. You know, how can he do that to the child? How can he cut off the head and all that? That is because you're deracinated. That means you're being pulled away from the original culture. In the original culture, you understand mythology. You understand that, you know, there are myths and there are metaphors. They're not literal things. And but in the West, it is not there. See, the West actually derives a lot from Greek civilization, where even there also gods get angry, they get jealous, they curse people, all that happens. But their religion is not that. In India, we have not, there is actually no religion, I would think, but we have not moved away from mythology at all. And from early childhood, you understand that Krishna can do mischief. The boy Krishna can steal butter, he can be scolded by his mother and all that, but you can also know he can have Sudarshan Chakra, he can send it, he's got miraculous powers, but you can balance both of them together.
3: Lekin ye cheeze confuse karti hain bachchon ko.
5: But were you confused? I was not confused. I had grandmother grandfather telling stories and we are not confused, but I feel if you're don't come from such an atmosphere, the stories can be shocking. See, in the stories of in original Greek Aeschylus stories, you know, the two feuding families, they invite the elders of another family, steal, abduct the children, cut them, cook them and feed them to their own family members. It is shocking, right? But the thing is, it comes from mythology, where an extreme can be imagined. you know, a moral is illustrated or a value is illustrated with extreme situations. It's not the same thing as a real thing happening. A person does not have a third eye. You know, you must see it as metaphorically as well. You should learn this, but that training does not come from school.

0: तो जैसे आई एम बॉर्न हियर राइट, तो इट्स सो मेनी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है ना, तो डू यू थिंक द गैप्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर व्हेन वी डिसाइड व्हेन ट्राइंग टू फिट इन, और इज अ पॉइंट व्हेर वी फाइंड आवर आइडेंटिटी बीइंग इंडियन ऑस्ट्रेलियन, और वी कीप गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू हैव लाइक द इंडियन कल्चर एंड देन द ऑस्ट्रेलियन कल्चर, वी डोंट नो व्हेर वी फिटिंग इन.
1: सो इन इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी एंड देयर इज इनइक्वालिटी एवरीवेयर, एवरीवेयर देयर इज इनइक्वालिटी. अगर आप इनकम में देखते हैं तो पॉवर्टी है, रिच है. अगर आप जेंडर में देखते हैं तो अभी एक डिस्कशन हमारा चल रहा था, अगर आप रेस में देखते हैं तो आपको ब्लैक वाइट कल्चर्स में बहुत बहुत रिसर्च है जो बताती है देयर इज ह्यूज गैप्स, राइट. सो वी कैन नॉट ब्रिज दोज गैप्स, राइट. व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इज टू ट्रेन आवरसेल्व्स एंड बिल्ड पॉलिसीज एंड ट्राई टू ब्रिंग अप सिस्टम्स दैट विल सपोर्ट पीपल. सो फॉर एग्जाम्पल जो ये गपशप विद आई का इनिशिएटिव है, इट्स ट्राइंग टू टेक एंड हमने बड़ा अच्छा टैग लाइन लगाया है, इन द वर्ल्ड ऑफ AI everybody needs an eye, you know. So that's the thing that, you know, we go to AI for our questions, right? But AI does not have the cultural values, the traditional values that we are brought up with, you are brought up with, right?
0: Yep.
1: So what I and all people involved in this initiative is going to do is trying to help you build your personality, your yep. careers in a way which does not sound like, oh, you are too Indian or you're too Australian.
0: Yep.
1: Because if they have done it, if I has done it, if Richa ji has done it, if Sunil ji has done it, so can you, right? Yep. What we didn't have is the support system. You know how it yeah. says it takes a village? So yeah. we don't have that support system, and that's what this whole program is going to do. Is we're going to build it together in a way which supports you in best way possible.
2: Very, very interesting.
0: Yep. Based on that question, don't you think it would be harder for our parents more than us, because they're also mixed between what upbringing they should give their kids, to the Indian culture or should they do with the Australian culture, like that mixture? What is your thought?
1: So I'm a parent of three, so I yep. hear where you're coming from.
0: Yeah.
1: And I have seen those systems professionally.
0: Yeah.
1: But I am never going to tell my daughter to call me by my first name or to call any uncle and aunt by their first
0: yep.
1: name.
0: Yep.
1: Right. I know that's what they're going to be doing outside. As a parent, you have to keep a certain sort of a discipline.
0: Yeah.
3: Or guide them
1: in a way yeah. which... later in life, you'll appreciate the system that you've
0: yeah,
1: been brought
0: course,
1: up with. You'll be proud of the system that you'll be proud
0: yep.
1: of. Exactly the mythology story. When my grandparents used to tell me those stories, I used to be in disbelief sometimes. But then you take it, your generation asks questions. That's where our generation was a little bit behind in that sense.
0: Yep.
1: We were not allowed to ask questions. We were not, I mean, it's not traditionally, culturally, the best thing to question people who are older than you, right?
0: Yep.
1: So you ask questions, and that makes us think as parents as to how best to address those questions. But you cannot convey all answers to your
3: Gopal
1: children
3: ji, agar Hindi
1: in
3: mein
1: a comfortable
3: bole
1: way. Hai na?
3: Zyada.
1: आप अपने बच्चों को हर जवाब वैसे नहीं दे सकते जैसे आपकी कम्युनिटी दे सकती है. मान लीजिए रिचा जी हैं और रिचा जी हमारे आई वाले प्रोग्राम में हैं, गपशप आई में, और मेरे को अपनी डॉटर से, अपने चिल्ड्रन से एक ऐसी टॉपिक पे बात करनी है विच माइट be a little bit stigmatized in the system. Bachche is not comfortable with us. Hum comfortable nahi bachcho ke saath. But Richa ji knows. Unko pata hai ki kaise isko navigate karna chahiye. Koi cheez jo main nahi bol pa rahi hoon comfortably, wo bol sakti hai. So I think in that way, agar aapke 5-6 jan, 7 jan bade hain, ये आपके लिए भी जाता है.
0: हाँ.
1: कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप मेरे से नहीं पूछ सकती हैं, मेरी बिटिया मेरे से नहीं पूछ सकती है. हर पेरेंट का एक अलग रिलेशनशिप होता है अपने चाइल्ड से. उसको
3: उसमें आपके इस पैनल में कुछ लोग होंगे जो
1: इवेंचुअली कुछ लोग होंगे, हम इसको बढ़ाएंगे और इसके अंदर हम ज़्यादा लोग रखेंगे, जेंडर डाइवर्सिटी भी रखेंगे. ऐसा नहीं है कि आई ही है, मेल्स फीमेल्स अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स. आई इज क्वाइट सीनियर, हम थोड़े 70s 80s के जो पेरेंट्स हैं, 60s के जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ यहाँ बिल्ड करी है, उनको भी सपोर्ट करेंगे. मेंटरिंग आपको प्रोफेशनली भी बहुत जगह मिलेगी. अगर आप जाएंगे तो देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट, मेंटरिंग फॉर यंग एट्सेट्रा, बट वहाँ पर वो कल्चरल एस्पेक्ट कम रहता है, राइट. हम मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको स्ट्रगल करने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए इन अ वे जिसके अंदर आप समझ पाएं कि हमारी चैलेंजेस क्या हैं, इंडियन सिस्टम में कैसे मैनेज किया है उसको, ऑस्ट्रेलियन में कैसे किया और हम उसका क्या एस्पेक्ट लेके आगे जाना चाहते हैं.
3: बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये शुरू कर रहे हैं आप लोग. तो हमारे कुछ श्रोतागण जो है माता पिता अभिभावक भी हैं और बच्चे भी हैं इसमें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बेटियों के लिए वो ऐसा भरोसामंद और खुला माहौल

0: कैसे बना सकते हैं ताकि बच्चे फ्रीली बात कर सकें ना घर में जो भी उनकी समस्याएं हैं।
1: एग्जैक्टली दो तीन बातें जो आजकल बहुत कॉमन हो रही हैं कि
0: जी.
1: लोग अपनी जॉब्स बहुत लूज कर रहे हैं,
0: जी.
1: जो बच्चे अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनको भी बहुत स्ट्रगल हो रही है, तो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, और यंग के लिए तो बहुत ज़्यादा। अगर आप जाके देखेंगे तो वर्क प्लेस रिलेटेड सुसाइड्स अटैम्प्ट जो होते हैं यहाँ पे, दे आर वेरी वेरी वरिंग इवन टू द गवर्नमेंट, और वो तो इंडियन कम्युनिटी भी नहीं है, वो तो जनरल कम्युनिटी है। सो द बिगेस्ट चैलेंज हमारे पास जो है वो है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप इंडिपेंडेंस, कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आपको किस तरह की इंडिपेंडेंस चाहिए, और आपके एक्सपेक्टेशन जो जेंडर एक्सपेक्टेशंस है वो हम इंडियन कम्युनिटी ने काफ़ी हद तक हैंडल कर ली है। वी ट्राई टू ब्रिंग बोथ जेंडर्स टुगेदर इन व्हाट वी एज पेरेंटिंग जो है, बट जो हम पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि बी ओपन टू having children go out to these programs, जैसे हम programs start कर रहे हैं, it's free of cost, कुछ भी नहीं है, आप बस अपने बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट भेज रहे हैं, वो बात कर रहा है, क्योंकि एज आई वाज सेइंग बिफोर इट टेक्स अ विलेज, एक जन पेरेंटिंग पूरी नहीं कर सकता है ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग वो चाहिए,
0: टीम चाहिए
1: और वो टीम आपको रिलायबल सोर्सेज हो जिनसे, और सब इतने इंटीग्रेटेड नहीं है कम्युनिटी में, जो न्यू कमर्स हैं वो इतने इंटीग्रेटेड
2: Children cannot ask some questions to parents.
3: Yeah.
2: Actually, they cannot ask some questions to a father that they could ask to a mother.
3: Yeah.
2: So, you know, in a community, there are gurus, there are friends, there are elders, there are uncles and aunts and, you know, sisters and cousins. That was a protective thing. But when that is not there, you need to formalize it and give it structure. I think great work you're
1: doing. Exactly. और हमको जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको, एज आई वाज सेइंग, हम लोग जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप उसको बहुत अप्रिशिएट करती हैं, और मैं अपने बच्चों से हमेशा बोलती हूँ यू आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न एज एन इंडियन बैकग्राउंड पर्सन, बिकॉज हमारी कल्चरल वैल्यूज़ इवेंचुअली द वेस्ट इज़ ऑल्सो you know appreciating yoga is a part of the western lifestyle we do a lot of pranayama you know there's a lot of things hamara jo vegetarian diet hai people are adopting you know plant based etc so where is all of that coming from wo yahi se aa raha hai ki jo hinduism ya cultural jo india mein hai wo usme kuch स्ट्रेंथ है जो कि हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा है, सो दैट वे आई थिंक ये प्रोग्राम वही सपोर्ट करेगा कि आपके पास इंडियन कम्युनिटी है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है इन अ सेफ एनवायरनमेंट।
0: नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है जैसा आप बता रहे हो, और बहुत लोग जुड़े ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आप ये बताइए कि जो महिलाएँ जो हैं वो जुड़ना चाहती हैं गपशप विद आय से, वो कैसे जुड़ सकती हैं, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजनाएँ हैं इसको लेके?
1: धन्यवाद। तो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अनीता दीदी, अनीता गुने जी जो आई की डॉटर हैं, या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक कुटुंब ग्रुप है जिसमें रिचा जी भी हैं वहाँ पे, और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन सब से अवेयर नहीं हैं तो दो श्री मंदिर जो है अपने ओबोन में, वहाँ पर आई रेगुलर जाते हैं, हम रेगुलर जाते हैं, सम पार्ट ऑफ दी कम्युनिटीज देयर, तो आप किसी से भी रीच आउट करेंगे तो हमको इवेंचुअली, रिचा जी, हम लोग एक फेसबुक पेज पहुँचाएंगे, इट्स क्वाइट अर्ली डेज राइट
0: जी,
1: सो हम एक फेसबुक पेज पहुँचाएंगे जहाँ पे पीपल कैन रीच आउट टू अस, और फिर हम उसके बाद उनको एक रेगुलर सेशन देंगे। तो अगर आप आते हैं हमारे पास तो हम आपसे पूछेंगे आप किस बात पर बात करना चाहते हैं कम्युनिटी में, और आप आर यू हैप्पी विद, जैसे अभी तो आई ही है बट और एक दो जन भी होंगे, तो आर यू हैप्पी विद समबडी हुज अ मेल और समबडी हुज अ फीमेल, ओल्डर और यंगर, राइट? और फिर आप उनसे मिलके बात करें, प्रोफेशनल बात करें, पर्सनल बात करें, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं थेरेपी पे जाने की तो वो एक अलग एस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं, राइट? वो दे हैव डिफरेंट ट्रेनिंग्स, यहाँ पे हम एक कल्चरल एस्पेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर
0: पहला स्टेप गोपाल जी ये होना चाहिए कि ओपनिंग अप है ना, पहले आप हर चीज़ की शुरुआत जो है एक बातचीत से ही होती है, एंड देन यू कैन टैकल जो भी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम है,
2: बिकॉज़ यू नो द डिजिटल एरा हैज किल्ड कन्वर्सेशन
0: जी,
2: दैट इज द प्रॉब्लम,
0: इसीलिए बातचीत ही नहीं होती है आजकल,
1: बातचीत।
0: तो अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहें तो आप दे दीजिए, और दूसरी बात की गोपाल जी, हमारा एक दर्पण फोरम ग्रुप है, उसमें भी हम डिटेल्स डाल देंगे, आपका फ्लायर डाल देंगे, तो जो भी रीच आउट करना चाहें वो ज़रूर आपसे बातचीत कर देगा। तो
3: सॉरी, ये आपका सेशंस जो होते हैं ये वन ऑन वन होते हैं कि ग्रुप सेशंस होते हैं?
1: अभी वन ऑन वन हो रहा है, एज प्रकाश जी वाज सेइंग, इट्स नॉट अ वन ऑफ, आपको किसी से बात करने के लिए आप उससे मिलेंगे, थोड़ा सा गपशप करेंगे, दैट्स वेयर द काइंड ऑफ टाइटल कम्स फ्रॉम. और उसके बाद आप थोड़ा सा जब व्हेन यू फील कंफर्टेबल, तो आपको लगता है मैं इनसे प्रोफेशनल बात डिस्कस कर सकती हूँ, इनसे मैं पर्सनल बात डिस्कस कर सकती हूँ. क्योंकि एक तो मिलना होता है और एक होता है हम एक अपनी एक अलग ऑरा क्रिएट करते हैं. तो आई हैज़ एवरीथिंग यू नो अंडर वन पर्सनालिटी, बट वैसा हो नहीं पाता है सबके साथ. तो जिसके साथ आपको लगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोफेशनल बातें आप जैसे मेरे से करिए और पर्सनल बातें आप अनीता दी से कर सकते हैं, यू नो दैट वे. सो एक आपको ये होता है यू जस्ट बाउंस ऑफ योर थॉट्स, राइट. AI ठीक है, अच्छा है, सबके यू नो ऑन योर फिंगर टिप्स है. बट जो जो डाइवर्स एक AI के बारे में शायद सबको पता ही अभी तक तो, कि इट्स ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज यू. वो आपको हमेशा यू नो ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी, यू नो आपको ये नहीं अच्छा लग रहा ठीक है मैं और इम्प्रूव कर दूंगी, बट दैट इज़ नॉट द केस. अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, हमको लगता है कि दिस इज़ नॉट गोना हेल्प यू लेटर ऑन, तो कोई इंसान ऐसा हो जो आपको बोले कि बेटा इसके बारे में सोचिए, आप दोबारा सोचिए.
2: It, because it's based on prior knowledge, even if in the future it can intuit or fake intuit and create
1: hallucinate, its own.
2: Can AI get bored? When somebody is talking to you, their eyes light up when you say something, or they smile, or they lose interest. Can AI lose interest? It cannot afford to. It's a commercial product. That's the problem. You need people to talk to.
0: चलिए, काफ़ी हैवी सब्जेक्ट हो रहा है, तो क्यों ना एक ब्रेक लेते हैं और एयरलिफ्ट का ही एक और गीत सुनवाते हैं.
2: अरे
0: बहुत सारे गाने हमारे पास हैं प्रकाश जी के.

0: Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976.
1: Darpan Hindi Karyakram mein sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413 385 976.
2: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कोपल सिन्हा से और श्री प्रकाश बेलवाड़ी जी से। तो कोपल जी, आप अब देखिए, कार्यक्रम में समय इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है।
3: जी, आप शुरू करें। एक
2: सूचना है जी।
4: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
2: जी हाँ श्रोताओं, विज्ञापन भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं कह रही थी कि समय कैसे निकल जाता है जब आप अच्छी बातचीत कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कोपल सिन्हा जी से और बातचीत कर रहे हैं श्री प्रकाश बेलवाड़ी जी से, जो एक्टर, निर्देशक और लेखक भी हैं। तो कोमल जी, आप बताइए कि आप अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी अपने इस प्रोग्राम के बारे में, और अगर आप अपना नंबर देना चाहे तो।
5: धन्यवाद, धन्यवाद ऋचा जी। मैं इसको क्लोजिंग के हिसाब से नहीं, बट मैं एक अलग तरीके से इसको फिनिश करना चाहती हूँ।
2: जी,
5: प्रकाश जी ने बताया, उनकी दो खुद की बेटियाँ हैं। प्रकाश जी भी माइग्रेट करके आए, अपना करियर बनाया, और अब प्रकाश जी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं।
2: जी,
5: तो अगर मैं एक 18 से 25 साल की बच्ची हूँ और मैं आपके पास आऊँ गाइडेंस के लिए अंडर आर इनिशिएटिव, तो आप ऐसा क्या कहेंगे मेरे लिए, हाउ टू नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कीपिंग इन माइंड के हम सब माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स के बच्चे हैं।
2: वेरी गुड सिनेरियो।
6: यू नो, एज लॉन्ग एज वी थिंक दैट वी डोंट हैव व्हाट वी शुड हैव हैड, एंड यू हैव दिस एंग्जाइटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट यू थिंक इज योर ड्यू, दिस एंग्जाइटी ऑफ बीइंग डिनाइड, यू नो, यू विल कीप सफरिंग। एक्चुअली यू शुड revalidate the word love. Love is an important word, and if you love to do something, you should go for it. If you love to do something for other people, it is, you get greater motivation, and the disappointment is much easier to handle. Otherwise, if you are self-obsessed and you constantly think about how you're feeling, you'll always keep feeling worse. It's like googling your symptoms. It just like gets worse. I feel you should turn outward and engage with the world, because that is what you inhabit, and you're a creature of this universe. You should look at the universe, and it will relieve you from this personal angst. That's what I would say.
5: Thank you. और एक मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, आज हम सब AI यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे, बड़े जो भी हैं, और वहाँ पे एक पेपर क्लिप फैलेसी है, आपने पता नहीं किसी ने सुनी है कि नहीं।
2: अच्छा।
5: उसमें ये चलता है कि अगर आप AI को बोलिए कि पेपर क्लिप्स बनाएं,
2: जी,
5: तो वो पूरे यूनिवर्स को ग्रेजुअली पेपर क्लिप्स में कन्वर्ट कर देगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैलेसी है, बिकॉज आपने उनको बोला है जो करने को,
2: जी,
5: वो करेंगे, और वो हर चीज़ यूज़ करके फ्रॉम द वर्ल्ड दे विल कन्वर्ट एवरीथिंग टू पेपर क्लिप्स। तो और दूसरी बात जो हमें ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, वी डोंट वांट टू गो देयर। दूसरी बात हमें सोचने की है कि हम AI इतना पसंद क्यों करते हैं, हमें क्यों इतना अच्छा लगता है, हम सब क्यों यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि वो हमें खुश कर रहा है। तो जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लिए तो सोचें ही सही, पर आपका कुछ भी प्रोफेशन हो, कुछ भी आपका लाइफ में आप जो कर रहे हैं पर्पस, उसमें ये देखिए कम्युनिटी में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, औरों को कैसे आप खुश कर सकते हैं, तो आपको भी वही इंपॉर्टेंस मिल जाएगी इवेंचुअली जो हमने आजकल AI को दे रखी है। सो थैंक यू सो मच। जिसको कॉन्टैक्ट करना है हमें, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है 0404 9533366, और अनीता दी और हम दोनों हैं. अनीता दी का नंबर मेरे पास है नहीं अभी स्ट्रेट वे, बट हमारा जो फ्लायर है वो हम शेयर करेंगे वेरी लिबरली.
2: बिल्कुल,
5: हम दोनों के नंबर हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
7: हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर और अनीता पंडित का कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे अपने ग्रुप में. सो धन्यवाद आपके समय के लिए. अब हम चलते हैं सुगंधा की तरफ कि आपका क्वेश्चन है प्रकाश जी से.
8: तो जैसे आपने बताया आपने कितने सारे कलाकारों के साथ काम करा है और ये सब, तो आपने इंडस्ट्री में भी कितने साल से हैं आप, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, इसको एडवाइस स्पेशली द यंग लिसनर्स व्हेन दे डिसाइडिंग व्हाट दे वांटेड इन द फ्यूचर और लाइक समथिंग यू वांट टू जस्ट टेल देम, नॉट इवन एडवाइस, व्हाटएवर यू वांट, व्हाट वुड यू वांट टू
6: से. डोंट बी पैसिव रिसीवर्स ऑफ मीडिया. सी व्हाट हैपेंस इज If when you say that they're not making good films, you must think you're implicated in it because you're not watching good films. They're not making. If everybody said we don't want concrete homes, we'll have eco-friendly homes, you know, then the developers will do eco-friendly homes. You know, you can't think that steel and concrete is being used and it's polluting the world, and you can't think you're not implicated. It's because of you it's happening. I'm saying to make media better, you should have better taste. You should look for better things. Yep. You should be a better person. Then, you know, you'll get a better world.
8: Yeah.
6: That's what I would say. Yep. Because I have this favorite saying which I borrowed from somebody. It's not mine, you know.
8: Yep.
6: Don't complain about the traffic. You're the traffic.
8: Yeah. And is there anything in the industry that you've learned from all your fellow co-stars or anything that you still apply in your life?
6: I have seen that the most successful of industry professionals, you know, in whether in journalism or in cinema.
8: Yeah.
6: You know, it's only now that I'm doing professional theater. And otherwise, I did amateur theater in India. But, you know, here, I will say this, that professional people, you know, whatever setbacks are there, they don't allow ego to come in the way.
8: Mm.
6: They look to understand what went wrong, what mistakes they made. They correct themselves and just move ahead, you know.
8: Yep.
6: They don't say like we lost the match, you know, so we will not play football again. They don't say, you know, they swallow their pain, live with it, and you know, they try to be better. This is what professionals do, and I think that is the most important thing for anybody who's doing something, because you will have setbacks. Only karma is in your control.
7: जी, मेरा यही अगला सवाल था कि सफलता तो मेरा अगला सवाल था प्रकाश जी कि असफलता और सफलता को आप किस दृष्टि से देखते हैं, आपके लिए क्या चीज असफल है?
6: When you make a product and it fails, it may not necessarily be the product that failed. It may be the public that fails it sometimes. It may be ahead of its time. Or it may not be understood correctly, you know. Good advice is not taken when a professor or a teacher gives sometimes, because, you know, it's not that the advice itself is bad.
7: Jee.
6: And, you know, from our side, maybe the way we gave the advice was not good. Maybe the way we made the film was not good. The way we did the article I wrote, the tone of it may not have been good. Jee. The language used may not have been great. My skills in writing may not be good. My skills in acting may not be good. So you should know why a thing failed. First, we should see what is success.
7: Mm-hmm.
6: If something makes everyone... See, that's another thing about the digital age. The number of likes you get does not make what you said valid, you know. It's just that if you collect a number of idiots into the room, you know, you can get validated. What does it mean? You know, I had a teacher who once said in a mental hospital that doctor is in a minority of one. But the doctor is right, correct? So I think we should be clear-eyed about what worked and what didn't work, and then we'll see why it didn't work, you know.
7: क्या बात है. और ऐसा कहा जाता है कि ये जिंदगी ही जो है ना, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक रंगमंच है और हम सब जो है इसमें एक्टर्स हैं.
6: शेक्सपियर.
7: तो आप जो है जीवन को अगर एक शब्द में आपको बयान करना हो तो आप क्या कहेंगे?
6: I am just an instrument of the universe. and I have to use that instrument because I've been consciousness. I've been given consciousness. I should use that instrument as well as possible.
2: बहुत सुंदर बात. और अगर कौन सा शहर आपको बहुत पसंद है? इतने इंडिया में आप इतने जगहों पर गए हैं.
6: I was born in Bangalore, so Bangalore is my favorite city. If I was not living in Bangalore,
3: traffic.
6: You don't look at how your mother is, you know. Mm-hmm. She's your mother, right? So otherwise Bombay, I like Bombay a lot. I think Bombay is a great city. Mm-hmm. And I think among the cities, although I've been to Seoul, to London, Birmingham, Seattle, New York, Boston, Paris, London, so many places.
2: Bahut sari.
6: To me, my favorite place, because I've been coming here for 8 years now, is Sydney.
2: Sydney.
6: I love Sydney.
2: वही सुनील जी ने भी यही कहा और हम भी चाहते हैं कि सिडनी ही आपका पसंदीदा शहर रहे. तो अगर आप जो है, आप तो एक अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, आपने बहुत लोगों को प्रभावित किया है, बहुत लोगों का जीवन प्रभावित किया है, लेकिन आपको कौन प्रभावित करता है? आप किस चीज़ से प्रभावित हैं?
6: At different stages in my life, I had many gurus. My theater guru is Prasanna ji. You know, I learnt a lot from him.
2: Ji.
6: When I was there was a Kannada writer, thinker, ji, journalist called P. Lankesh. He was a big guru for me. Dr. Anant Murthy, writer, was a big guru for me. But people I've not met also, there are many such gurus, but the people I've not met also have influenced me a lot. I used to like Isaac Asimov, science fiction writer, a lot. I thought he was a very good writer.
2: Mm-hmm.
6: I've been influenced by, you know, many playwrights. I think Brian Friel, Irish playwright, is a great playwright. He's been a big influence on me. Mm-hmm. I've liked, you know, Shakespeare. I'm very influenced by, very strongly influenced by the Mahabharata. I feel there is nothing greater that I've read a lot of Greek. I shouldn't say lot. Lot is too arrogant. I've read some Greek literature, and it's very good. I'm not saying no, but
3: actually, we need
6: nothing like the Mahabharata
3: because of the time. And actually, we should do more programs.
2: मैं वही सोच रही हूँ कि जितनी नॉलेज आपको है और जितने वर्सटाइल एक्टर हैं आप, आपसे तो बातें और होनी चाहिए. तो आप वादा करके जाइए कि अगली बार फिर आप जरूर पधारेंगे.
6: एनी टाइम ऋचा जी, योर कॉल आई विल कम.
3: स्पॉन्सर का मैसेज भी दे देते हैं
2: बिल्कुल, और फिर अंत में आपका संदेश श्रोताओं के लिए सुनेंगे.

0: Like, you curry know, Masters Complete Curry Mix, available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश.
2: श्रोताओं, एक प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताना चाहती थी. सुर और एहसास का कार्यक्रम हो रहा है, गज़लों का प्रोग्राम है, और गायक हैं सिडनी के जाने माने श्री अंकुर, डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव जी. बहुत ही अच्छे जो है वो गाने गाते हैं, और कहने का तरीका उनका बहुत अच्छा है. ज़रूर अटेंड कीजिए. ये कार्यक्रम हो रहा है अगले सैटरडे 11th of July को. पूरी जानकारी के लिए आप दर्पण फोरम में उनका फ्लायर हमने डाला है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं. तो ज़रूर इस कार्यक्रम को देखिए, बहुत ही सुंदर गीतों का ये प्रोग्राम होने वाला है. तो आइए लौटते हैं फिर समापन की ओर. और प्रकाश जी, आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एक सूत्र देना चाहते हैं?
3: I have always been thinking about one thing, and just because you asked the question, I'm answering immediately. You know, you live in Sydney, you live in Australia. Whenever you come to some place, I know you know India, and your town or city in India is, you know, is your favorite. It's that's your mother place. But you come here, this is your karma bhumi. To belong here, you should transcend just being Indian, and you should become Australian as well. And you know, you should be able to do professional. When you, otherwise your children, you know, they'll be second class, you know, in imagination. What will happen is then I don't have the roots there, and they will be like marginal citizens here in some ways. For them to be full Australians, they should not just watch cricket, maybe they should watch, however violent it is, you know, Australian football. I know they should participate in Australian imagination, in their politics. You know, you should be able to do theater, should learn its literature, you know, engage with
4: 98.5 2000 FM.